मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आंशिक संवाद 1947 ज्येष्ठ माह की

एकादशी तिथि तदनुसार सन 2026 जून महीने की दिनांक 25 और दिन है गुरुवार। श्रोताओ, अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि के 9:16 तक प्रसारित की जाने वाली सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे प्रसारण निष्पादक श्रीमती संगीत समो, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंत स्वर्गीय और श्री तानिंग तोको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास, मनपा में उद्घोषक श्री तूतन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका कर्मो। हम सभी आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में स्वागत करते हैं।

मीडियम एफ 97.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारे केंद्र से आज की तमाम कार्यक्रम आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आप सुनिए, अब से ही थोड़ी देर बाद यानी दोपहर के ठीक 2 बजे मिड डे न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: success. Don't get locked down to only one thing in life. Ki agar wo nahi hua to everything is over. No, it is not that.
1: In football, South Africa advanced to the knockout phase of the FIFA World Cup for the first time with a 1-0 victory over South Korea in Monterrey this morning. In men's cricket, India A were 173/2 in the opening session of day one of the first multi-day test match against Sri Lanka A at the Galle International Stadium in Sri Lanka when reports last came in. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Bangladesh in the Group A clash at the Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. Harmanpreet Kaur-led women in blue are currently placed second in Group A, having won 2 out of 3 matches. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in the afternoon session today. The Sensex climbed 575 points to 77,566, while the Nifty jumped 173 points to 24,195 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Samvidhan Hatya Divas being observed today. Prime Minister Narendra Modi pays homage to those who defended democratic values during the emergency. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for stronger collaboration amid global challenges, invokes Vasudhaiva Kutumbakam at Jeju Forum in South Korea. BRICS Energy Ministers meeting begins in Gurugram under India's BRICS 2026 chairship. Powerful earthquakes strike Venezuela back-to-back, causing multiple building collapses. State of emergency declared. South Africa advanced to knockout stage of FIFA World Cup for first time, defeating South Korea 1-0 in Monterrey. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
3: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया।
4: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्त गीत गया, 1 वर्ष बीत गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
4: The global south should be enabled.
5: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी

0: एसजीपीसी ने भी श्रीमान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये और घायलों को 1-1 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति पति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज

0: मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे मीटी न्यूज तथा दोपहर समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। डीजी श्रोताओं, अब पेश है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए गायक अनूप जलोता से हिंदी भक्ति गीत। डीजी श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे गायक अनूप जुलत्ता से हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओ, हम आपको सुनाते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। अलग अलग प्रांत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए चंद निशी आधुनिक गीत। इसके गायक कलाकार है बेंजिया हेमंता और तरम तारा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बेंजिया हेमंता और तरम तारासी निशी आधुनिक गीत। इसी के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। डीजी श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम महिला मंच। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए मेजर रेलिंगो बोक खातिंग वीरता संग्रहालय और इसके महत्व विषय पर म्यूजियम कोऑर्डिनेटर मिस सनली लेगम सिंफो और गैलरी गाइड मिस लोबसंग छुकी से भेंटवार्ता। भेंट करता है तोशी ड्रामा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग में स्थित मेजर रलिंगनो बोक खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आए हुए हैं और हम यहाँ पर मुलाकात करने जा रहे हैं यहाँ के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर सनली लेगम सिंफो जी से। तो सनली जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
2: थैंक यू।
1: श्रोताओं, शायद आपको याद होंगे कि इस संग्रहालय के उद्घाटन गत 31 अक्टूबर 2024 को हमारे देश के वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पाटिल, या उन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस संग्रहालय के उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आसाम के शहर तेजपुर से वर्चुअल माध्यम से किया गया। तो श्रोताओं, आपने इस संग्रहालय के बारे में सुने तो बहुत होंगे और आप में से कई लोग यहाँ पर दौरे भी कर चुके होंगे, लेकिन इस म्यूजियम के बारे में विस्तार से आज हम संजय जी से जानकारी प्राप्त करेंगे और आप तक हम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। जी हाँ, तो हम म्यूजियम में पहुँचने के बाद हमें सबसे पहले प्रवेश द्वार के सामने ही देखने को मिल रहे हैं कि द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन, तो इसकी विशेषता क्या है, इस बारे में संजय जी आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: आप म्यूजियम जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले सोल ऑफ इंडिया दिखेगा। तो इसका रीजन ये है कि सोल ऑफ इंडिया हमने इसलिए बनाया ताकि हम इंडिया को एक तरह से यूनाइट कर सके। तो हमने सोचा कि अगर हम इंडिया को यूनाइट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हमारे शेयर्ड स्ट्रगल्स, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स की जो कहानी है, उसी की मदद से हम हमारे इंडिया को ट्रूली यूनाइट कर सकते हैं। तो इसी वजह से सोल ऑफ इंडिया, जैसे ही आप म्यूजियम एंटर करेंगे तो आपको वो दिखेगा। एंड देन सोल ऑफ इंडिया पर आपको टोटल 36 कैस्क मिलेंगे। तो हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, सो होल ऑफ इंडिया से हमने कलेक्ट करके यहाँ पे सारी सॉइल रखी हुई है। ईच एंड एवरी लोकेशन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जगहों से कलेक्ट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने दीपा से कलेक्ट की है। दीपा पर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हमारा झंडा वहीं पर लहराया गया था, तो हमने दीपा से कलेक्ट की है। और फिर झारखंड जैसे जगहों से भी कलेक्ट की है, जहाँ पर नीलांबर और पीताम्बर एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वहाँ पर उन्हें एक पैर पर हैंग कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, तो उस जगह से भी हमने कलेक्ट की है। तो हमारे रिसर्च के द्वारा हमने उस एग्जैक्ट पैर को ढूंढ निकाला, फिर हमने उसी जगह से कलेक्ट। तो सिमिलरली सारी सॉइल्स ऐसे ही कलेक्ट की गई है। तो इस सॉइल को हमारे एक रॉयल अरुणाचल राइडर्स, एक ग्रुप ऑफ राइडर्स है, उन्होंने पूरी इंडिया ट्रेवल कर ये सॉइल्स कलेक्ट की है। टू बी प्रिसाइज, उन्होंने 25 डेज में 21 स्टेट्स कवर की।

0: है और जो रेस्ट ऑफ द सॉइल्स है वो उनके बाइकर्स ग्रुप की कनेक्शन द्वारा यहाँ भेजी गई है।
1: जी जी, तो इस म्यूजियम के अंदर स्थित द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन हमें ये बताती है कि हमारे इस महान देश के लिए देश भर में जहाँ जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे तो उन पवित्र जगहों से हमारे अरुणाचल प्रदेश के राइडर्स ने उन पवित्र माटी को लेकर आए और हम आज उन सारे जगहों पर जाकर देखना तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस संग्रहालय के अंदर आकर आप उन सारे पवित्र जगहों का दर्शन कर सकते हैं। जी चलिए, तो सनली जी आप हम म्यूजियम के दूसरे सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं और आप हमें बताइए कि मेजर बॉब खाटिंग अ लाइफ ऑफ वेलियर क्या कहता है, क्या इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को और बाहर के लोगों को ये जरूर जानकारी है कि हमारे तवांग को भारत देश में शामिल करने में मेजर रालंगना बॉब खाटिंग जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, तो आप हमें बताइए।
0: फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर जब आप सोल ऑफ इंडिया देखेंगे उसके बाद आपको मेजर खाटिंग की जो लाइफ हिस्ट्री है उनके बारे में, उनकी लाइफ टाइम लाइन वो सारी आपको देखने को मिलेगी मेजर खाटिंग की गैलरी पर। तो इस गैलरी पर हमने उनकी लाइफ फेसेस रखी है, तो सारी उनकी अचीवमेंट्स, जो पोजीशंस उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में हेल्प और वो कहाँ पर पैदा हुए थे वो सब, तो आपको अच्छी तरह से जानना है तो आपको खुद म्यूजियम पर आकर विजिट करके सब कुछ जानना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ, यहाँ पे आपको जब आप इस गैलरी पर आएंगे तो आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी, बिकॉज आप जो उन्होंने तवांग ले किया था वो शायद बहुत बड़ी बात है और वो एक बहुत महान इंसान भी थे, बिकॉज एक ट्राइबल इंसान हो के उन्होंने बहुत सारी पोजीशंस अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, वो एक टीचर थे, एक सोल्जर थे, पॉलिटिशियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर वो डिप्लोमेट भी थे, उसी वजह से हमने ये म्यूजियम उनकी याद में बनाया है। और उन्हें एक्चुअली 1957 पर पद्मश्री भी मिला था, तो वो मणिपुर के पहले ट्राइबल इंसान थे जिन्हें पद्मश्री मिला था। फिर उन्होंने अपनी एंड ऑफ करियर में बिफोर रिटायरमेंट वो एम्बेसडर टू बर्मा की तरह भी सर्व किए थे, उस समय भी वो एक ओनली ट्राइबल फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट ट्राइबल फ्रॉम इंडिया हु सर्व्ड एज एम्बेसडर टू बर्मा थे। एंड अगर आप आगे मूव करते रहेंगे तो आपको उनकी पर्सनल आउटफिट्स देखने को मिलेगी, उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने यू नो मेजर खाटिंग के बारे में मेमोरी शेयर करते हुए आपको देखने को मिलेगी इस गैलरी पर।
1: जी, हमें इस सेक्शन के अंदर आने के बाद ये पता चलती है कि मेजर खाटिंग ने अपने जीवन में किन पदों को प्राप्त किए थे, किन पुरस्कार को उन्होंने प्राप्त किए थे और उनके द्वारा उपयोग किए गए चीजें, उनके कपड़े और यहाँ तक कि उनकी असली आवाज हमें सुनने को मिलता है। और जैसे कि सनली जी ने कहा कि सचमुच हमें ऐसा लगता है कि मेजर खाटिंग यही है और हम उनके घर आए हुए हैं। और ऐसे ही हम संजय जी के साथ बातें करते करते अब म्यूजियम के तीसरे सेक्शन पर पहुंच चुके हैं जिसके नाम है द टेकिंग ऑफ तवांग 1951। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: तो मेजर खाटिंग यहाँ पर 1951 पर आए थे और उन्होंने तवांग को 1951 पर ही तिब्बत से आजाद करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लाया था, बिकॉज एट दैट टाइम तिब्बत के अंदर था तवांग, इट वॉज अंडर तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये जो टेकिंग ऑफ तवांग गैलरी है ये आपको पूरी कहानी इन अ वे, सो इट नरेट्स द होल स्टोरी ऑफ हाउ ही इंटीग्रेटेड तवांग इनटू इंडिया। तो उनकी जर्नी कैसी रही, कौन लोग थे जो इस इंटीग्रेशन पर इन्वॉल्व थे, वो सारी आपको देखने को मिलेगी। एंड दो जो लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन पे यू नो दे हैड हैंड इन दिस इंटीग्रेशन वॉज जयराम दास दौलतराम, हु वॉज देन द गवर्नर ऑफ असम, एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। नो बिकॉज ऑफ हिम वी आर लाइक इट वॉज रिकग्नाइज द तवांग नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इन टू इंडिया, सो ही वॉज द बिग ब्रेन बिहाइंड दिस होल ऑपरेट, दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल तवांग हिज लास्ट गिफ्ट टू इंडिया। एंड एस वी मूव ऑन, इस गैलरी पर आपको मेजर खाटिंग की खुद की हैंड राइटिंग एंड अगेन इंटरव्यूज जहाँ पे पीपल आर शेयरिंग द मेमोरीज और देयर एक्सपीरियंस, या जो उन्होंने फील किया था इंटीग्रेशन के वक्त, वो मेजर खाटिंग के बारे क्या सोचते थे और तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे क्या सोचते थे, वो सारी आपको इस गैलरी पर देखने।
1: जी जी जी, अब हम म्यूजियम के अंदर यूं ही चलते हुए अब ऐसी एक मजेदार सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिसके नाम है मोन्यूल ब्लेस्ड लैंड ऑफ द मोनपा, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं कि मोनपा जनजाति के लोग पुराने जमाने में किन चीजों के उपयोग करते थे, जैसे खाना बनाने के लिए, पहनने के लिए।

0: और कपड़े किस तरह से बुनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बुद्धिज्म के इतिहास, तो इस बारे में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। और जो बाहर से पर्यटक आकर यहाँ देखते हैं उन सारे आर्टिफैक्ट्स को, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होगी कि इसे किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको जानना है तो आपको आगे डिजिटल सेक्शन की ओर बढ़ने होंगे और वहाँ पर आपको सारे चीज़ों को उपयोग किए जाने वाले वीडियो देखने को मिलेंगे।
1: सो दिस गैलरी इज कॉल्ड द हेरिटेज ऑफ मोन्यूल। यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस गैलरी की एक यूनिक बात ये है कि जब आप आएंगे तो आप आर्टिफैक्ट्स को एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। यूजुअली आप जब म्यूजियम पर जाते हैं तो आप डू नॉट टच वाले साइन देखते हैं, पर इस गैलरी पर आप एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। तो आफ्टर आप वो गैलरी पर टच एंड फील करके आएंगे, उसके बाद आपको डिजिटल गैलरी देखने को मिलेगा। तो इस गैलरी के बिहाइंड थॉट प्रोसेस ये था कि आप वहाँ पर सब कुछ फील टच करेंगे और यहाँ आके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे डिजिटल कॉन्टेंट्स होंगे, तो आप यहाँ पे लाइफ ऑफ ब्लॉक पास देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने वहाँ पे आरा बनाने वाले यूटेंसिल देखी होगी, तो फिर आप यहाँ पे देख सकेंगे कि आरा किस तरह बनाया जाता है। उसके लिए हमारे पास 2 TV पैनल्स है जहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। एनी अदर, छुरपी कैसे बनती है, ब्लॉक पास कैसे जीते हैं, जो आप शिंखा पहनते हैं मोनपास लोग, तो वो कैसी बनती है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड एट लास्टली वी हैव यहाँ पे जो होलोग्राम, दिस इज अ टेक्नोलॉजी, उसे होलोग्राम फैन कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड देन आपको एक AV डिस्प्ले देखने को मिलेगा, दैट्स ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, जहाँ पे आपको तोरग्या, जो यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो वो डांस फेस्टिवल और जो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका भी एक ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्टली आई फॉरगॉट टू मेंशन, लेकिन जो मोनपा गैलरी है वहाँ पे आपको वर्चुअल रियलिटी, दैट्स VR हेडसेट्स, वो भी आपको मौजूद दिखेंगे। तो वहाँ पे हमने 3 मोनेस्ट्रीज, जो तवांग के इन एंड अराउंड सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज की तरह जाने जाते हैं, दैट्स क्रोमटेन, किमनास और तकसंग, वो 3 गोम्पा के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे हमने इसीलिए रखा है क्योंकि इन मोनेस्ट्रीज में जाने के लिए, एक तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज है, एंड अगर आपको वहाँ पे विजिट करना है तो इधर आपको बहुत हाइक करना पड़ता है या फिर फूड रिस्ट्रिक्शन से आप रसून नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते। तो बाहर से विजिटर्स आएंगे तो अगर वो 2-3 दिन के लिए आएंगे तो एक पूरा दिन वो इन मोनेस्ट्री पे डेडिकेट नहीं कर सकते, या फिर जो बूढ़े लोग हैं यहाँ के या बच्चे हैं, वो इतने स्ट्रेंथ वाइज इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो वहाँ पर जा सके, पर उन्हें फिर भी अगर वो म्यूजियम पर आएंगे तो बिना वहाँ जाए उनके मॉनेस्ट्री के दर्शन हो जाएंगे, उसी वजह से हमने वो रखा।
0: तो चलिए, हम एक ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं, एक ऐसी सेक्शन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें मेजर खाटिंग के असली स्वर सुनने को मिलते हैं, तो इस बारे में बताइए।
1: सो इस सेक्शन पे इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिजिटल गैलरी, तो यहाँ पे आपको मेजर खटिंग की आवाज़ सुनाई देगी। तो वो 1985 पे, उनके मृत्यु के 5 साल पहले, वो तवांग फिर आए थे तवांग की कंडीशन चेक करने के लिए। तभी उन्होंने आकाशवाणी तवांग जो है वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी, तो उसी इंटरव्यू के बदौलत हम ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग, हम उनकी आवाज़ आज सुन पा रहे हैं, बिकॉज प्रायर टू दिस उनकी कोई रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो कुछ मौजूद नहीं थी। तो इट्स ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग, वी आर एबल टू लिसन टू हिज वॉइस राइट हियर इन द म्यूजियम। एंड आफ्टर आप उनकी आवाज़ सुनेंगे, फिर आपको फ्लैग इन, प्लान द फ्लैग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो हमने प्लान द फ्लैग इसीलिए बनाया था बिकॉज उन्होंने तवांग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर झंडा, हमारा इंडियन फ्लैग गाड़ कर ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था यहाँ पर तवांग पर। तो हम हमारे विजिटर्स को वही सेम फीलिंग, जब मेजर खटिंग ने झंडा प्लांट किया था तो वो सेम फीलिंग हम उनको देना चाहते थे, उसी वजह से हमने ये सेक्शन प्लान द फ्लैग बनाया है, जहाँ पर आप अपना खुद का झंडा गाड़ कर वो सेम फीलिंग शेयर कर सकते। फिर तो अभी हम टूवर्ड्स द एंड आ चुके हैं, तो आफ्टर प्लान द फ्लैग आपको पिक्चर ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप सरदार पटेल एंड मेजर खटिंग, जो 2 ग्रेट पर्सनैलिटीज है जिसके वजह से हम यहाँ तवांग पर खड़े हैं, एंड इट्स पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप उन दोनों के साथ भी फोटो ले सकते हैं। एंड लास्टली हम फिर एंट्री फॉयर पर ही आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक कोट भी देखने को मिलेगा, तो वो सेम आकाशवाणी तवांग

0: वही सेम 1985 इंटरव्यू की है जहां उन्हें इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप जो यूथ्स ऑफ तवांग हैं उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं। तो आपको वो कोट दिखेगा जो मेजर खटिंग यहाँ के यूथ्स के लिए छोड़कर गए थे।
1: जैसे कि संगली जी ने म्यूजियम के अंदर चलते चलते हमें इस म्यूजियम की विशेषताएं के बारे में बताएं, तो हमें काफी अच्छे लगे इस बारे में जानते हुए। और अब हम वापस एक बार प्रवेश द्वार के सामने पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम यहां से अभी जा नहीं रहे हैं, बल्कि हमें कुछ और सेक्शन के बारे में और जानने हैं, क्योंकि हमारे अभी गैलरी गाइड लोबसांग छेकी जी से मुलाकात करने तो बाकी है। तो जी हाँ, हम अब लोबसांग छेकी जी से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ के गैलरी गाइड। तो लोबसांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स रखे हुए हैं जिसे मेडल सेक्शन कहते हैं, तो इन मेडल्स की क्या विशेषता है, आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: ये सेक्शन जो उनका मेडल सेक्शन है, लाइक वो कुछ गिना चुना इंसानों में से था जिनको दोनों गवर्नमेंट से मेडल मिला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी मिला था और इंडियन गवर्नमेंट से भी मिला था। ये उनका फर्स्ट मेडल है, मिलिट्री क्रॉस मेडल, और इनको रिसीव किया था 1944 में और इसको दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर ने। और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। और उनका वर्मा स्टार मेडल है, उनको इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल मिला है, उनको पद्मश्री मिला है, और उनको पद्मश्री मिला है 1957 को, और उनको अरुणाचल रत्न भी मिला है। उनको अरुणाचल रत्न मिला है इन 2020-21 और वो दूसरा इंसान था जिनको अरुणाचल रत्न मिला। और फ्रॉम 1987 टू 2020-25 अभी तक में सिर्फ तीन ही को मेडल मिला है और वो दूसरा इंसान है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको उनका अचीवमेंट सब यहाँ पे आप देख सकते हैं और उनका आवाज सुन सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं पे उन्हीं के सामने बैठे हो, उन्हीं का आवाज सुन रहे हो।
1: हम आगे बढ़ते हुए अब इस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिसके नाम है 1962 द वैलियंट वॉरियर्स। इस बारे में फिर हम चुकी जी आपसे जानेंगे, इस बारे में आप हमें बताएं।
2: ये जो सेक्शन है वो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है। और जैसे कि आप सभी को मालूम है 1962 में इंडिया में वार हुआ था, वो दो साइड से, एक अक्साई चीन और एक तवांग से। और तवांग में उन्होंने असम तक पूरा चाइनीज आर्मी चले गए थे, पर जो अक्साई चीन है वहाँ पे उन्होंने 2400 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा उन्होंने कैप्चर कर लिया था और वो अभी भी उन्हीं के अंदर में है। और यहाँ पे एक पर्सन है, उसका नाम है नीलम तिपी। वो पूरे अरुणाचल से वो अकेला ही था जिन्होंने 1962 वार में हिस्सा लिया था। ये निशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और अगर आप यहाँ पे 1962 गैलरी में आते हो तो आपको यहाँ के 1962 वार के ऊपर में उनके बैकग्राउंड के बारे में सब पढ़ने को मिलेगा, न्यूज कवरेज को देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे उन्होंने कौन से एरिया से उन्होंने तवांग में एंटर किया था वो सब मैपिंग देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे 1962 वार में जितने भी गन्स वेपन्स यूज हुआ है वो सब आपको ओरिजिनल देखने मिलेगा। और 1962 वार में जो शहीद हुए थे और उनको जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है उन सभी को आपको देखने मिलेगा ये गैलरी में, और शहीदों के नाम। और यहाँ पे कुछ मूवीज है जो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है, और कुछ बुक्स जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे रेजिमेंट्स है जिन्होंने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया, उनका सिंबल है। और यहाँ पे 56 रेजिमेंट ने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया था।
1: जी, तो अब हम एक बार फिर द लैंड ऑफ मनपास के सेक्शन में पहुंच चुके हैं। तो इसकी जो डिजिटल सेक्शन है इस बारे में हमें संगली जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि छिकी जी आप हमें एक बार फिर यहां पर रखे गए आर्टिफैक्ट्स है, कपड़े है पुराने जमाने के, और बुद्धिज्म के इतिहास है, तो इन सभी चीजों के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जैसे कि 1951 में मेजर बोब खातिंग यहाँ आए, उन्होंने तवांग को इंडिया के साथ मर्ज किया, और उसके बाद 1962 का वार जो जवान इतने शहीद हो गए, और ये सब किसके लिए? क्योंकि ये हमारे जो यहाँ तवांग के जो लोकल है, यहाँ पे जो ट्राइब पाया जाता है मोनपा, उनके लिए, उनका कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उन यहाँ के मोनपा पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा यही मोटिव है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आए उनको दिखाए कि हमारा पहले कल्चर क्या हुआ करता था, यहाँ के लोकल जो है, यहाँ के लोग है जो क्या पहना करते थे, क्या चीजें यूज किया करते थे, और जो यहाँ के हमारे यहाँ के जो इवन लोकल से

0: अगर वो भी यहाँ आते तो उनको अपना ट्रेडिशन को देखने को मिलता है, जो कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा चीज़ है जो अभी सभी जगह में पाया नहीं जाता है, और कुछ ऐसा चीज़ है जो जिन्होंने यहाँ के जो अभी यूथ है उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, तो वो सब यहाँ पे दिखाया गया। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस है, यहाँ पे जैसे कि लेदर बैग है, और यहाँ पे जो कॉइन है जो पहले यूज़ हुआ करता था, यहाँ पे वेट मशीन है जो पहले यूज़ हुआ करता था, स्टोरेज बॉक्स जो अंदर से बैम्बू से बना होता है और बाहर से उसको स्किन से कवर रहता है, और यहाँ पे लोकल हाउस को 3D पेंटिंग में भी दिखाया गया है कि उन यहाँ पे लोकल घर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे हैंडक्राफ्ट कैसे हुआ करता है, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे VR भी है, वर्चुअल रियलिटी, तो ये ऐसा है कि यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये ऐसा मोनेस्ट्री का व्यू कैप्चर किया है जहाँ पे टूरिस्ट इजीली नहीं पहुँच पाते या उनके टूर में वो कवर कर नहीं पाते, और कुछ ऐसा जगह है जैसे कि क्रमतिंग गोंपा जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच पाता है और वहाँ पे चल के जाना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे ही बैठ के उसको जैसे कि आप वहीं पे हो ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब दिखाया गया है, और इवन यहाँ पे हमारा कल्चर जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो सब बताया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, और जितने भी हमारे यहाँ के 7th century से जैसे कि मेराकलामा लोटे ग्याजो उनके बारे में, मेराकलामा लोटे ग्याजो जैसे कि तवांग मोनेस्ट्री बनाए उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि 7th century में केप कलावांपो थे उनके बारे में लिखा गया है, गुरु पद्मा समावा के बारे में लिखा गया है, बुद्धिज्म कैसे आए और बुद्धिज्म से पहले हम क्या प्रैक्टिस करते थे, और यहाँ पे हम ये सब अपना जो मोनपा का कल्चर है ट्रेडिशन है वो सब यहाँ पे शो किया गया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: जी तो आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम यहाँ मेजर बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आने के बाद, यहाँ सारे चीज़ों को देखने के बाद और आप दोनों से मिलकर बातें करने के बाद हमें ये समझ में आती है कि मेजर खाटिंग ने तवांग को भारत में शामिल करने में कितने कठिनाइयों का सामना किया और उनके कितने बड़े योगदान हमारे लिए रहे हैं, और उन्हीं के मेहनत के बदौलत आज हम अपने आप को पूरे गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम भारत के सबसे सुंदर जिला में से एक तवांग से हैं, और साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उनके मेहनत, उनके परिश्रम, उनके योगदान को हमेशा के लिए याद रखना है, और उनके सारे चीजें, उनके सारे यादें इस म्यूजियम में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और हम तवांग वासी मेजर खाटिंग को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। धन्यवाद।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मेजर रिलिंगो बॉब खाटिंग वीरता संग्रहालय और इसके महत्व विषय पर म्यूजियम कोऑर्डिनेटर मिस संगली लिगम सिंगफो और गैरली गाइड मिस लोबसंग छुकी से भेंट करता थे मिस दोर्जी ड्रमा। इसी के साथ ही कार्यक्रम महिला मंच अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा इस संदेश के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। निजी श्रोताओं, अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म किस्मत कनेक्शन से। आतिफ असलम और अलका याग्निक के युगल स्वरों में, गीत शहीद कौधरी के है व संगीत प्रीतम का।

विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान के स्वरों में फिल्म मुन्ना माइकल से। इस गीत के गीतकार हैं कुमार तथा संगीतकार विशाल मिश्रा।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को यू ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, कुमार द्वारा शब्द रचना पर फिल्म बागी से मीट ब्रोस और मोनाली ठाकुर के आवाजों में, और इस गीत को संगीत से सजाया है मीट ब्रोस ने।

श्रोताओ, गीत मंजरी कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म एक विलन से, अंकित तिवारी के आवाजों में। मनोज मुंतजिर के रचित गीत को संगीत से संवारा है अंकित तिवारी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म गुमराह से। जरा खान, अरमान मालिक और सलमा आगा के आवाजों में। रश्मि विराग के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

श्रोताओ, अभी आपने आनंद लिया फिल्म बागी से यह गीत। मीट ब्रोस अरिजीत सिंह, खुशबू ग्रेवाल के आवाजों में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया था मीट ब्रोस ने। श्रोताओ, कार्यक्रम को यू ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म शहजादा से, शश्वत सिंह के और शलमाली कोलगेरे के स्वरों में। समीर द्वारा शब्द रचना पर इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है फिल्म खट्टा मीठा से। के और सुनिधि चौहान के आवाजों में गीत इर्शिद कमिल के है व संगीत प्रीतम का।

श्रोताओ, फिल्म खट्टा मीठा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए पेश है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए रोनू मजुमदार से मुरली वादन तथा तबला पर संगत दे रहे हैं श्री दुर्गा प्रसाद ने। लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे रोनु मजुमदार से मुरली वादन तथा तबला पर संगत दे रहे थे श्री दुर्गा प्रसाद ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे साथ

0: यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों के श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुणाचल प्रदेश में कल 405 मेगावाट पानी और जल विद्युत परियोजना के निकट स्थित निपको कॉलोनी में अचानक आई बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु जबकि 4 अन्य अब भी लापता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अरुणाचल प्रदेश के कई पंजोर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करने के लिए भारतीय वायुसेना के एसटीआरएफ कर्मियों तथा राहत सामग्री को हवाई मार्ग से पहुंचाया गया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में जारी। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से और दक्षिण अफ्रीका में मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा कर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाते हैं जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे।
1: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रही। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां भी पढ़ी।
2: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, 1 बरस बीत गया।
0: अरुणाचल प्रदेश में कल 405 मेगावाट पान्योर जल विद्युत परियोजना के निकट स्थित 43 निपको कॉलोनी में अचानक आई बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु जबकि 4 अन्य लोग अब भी लापता है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय शिक्षिका निर्मला गुप्ता के रूप में हुई है। निपको के परियोजना प्रमुख ने जानकारी दी है कि इस घटना में 17 लोग घायल हुए हैं जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल मरीजों को उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से लोअर सुबनसिरी जिले के 0 भेजा गया है। पीतापुल में सड़क अवरुद्ध होने के कारण उन्हें प्रभावित क्षेत्र को पैदल पार कराकर आगे चिकित्सा सुविधा के लिए ले जाया गया।

0: इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए ने आज बताया है कि कई पान्योर जिले के पूसा क्षेत्र में आए फ्लैश फ्लड और लापता 4 लोगों की तलाश के लिए दूसरे दिन भी खोज एवं बचाव अभियान जारी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है तथा बचाव, राहत और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करने के लिए भारतीय वायुसेना के एसटीआरएफ कर्मियों और राहत सामग्री को हवाई मार्ग से पहुंचाया गया है। पूसा क्षेत्र में कल आए विनाशकारी बाढ़ के बाद ये कदम उठाया गया। भीषण बाढ़ की सूचना मिलने पर अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए आपातकालीन हवाई सहायता सक्रिय की है। अधिकारियों के अनुसार कई पान्योर जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी मेहता के अनुरोध पर नागरिक उड्डयन विभाग ने तुरंत शिलांग स्थित पूर्वी वायु कमान के माध्यम से भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय स्थापित किया। चुनौतीपूर्ण मौसम परिस्थितियों के बावजूद भारतीय वायुसेना ने ईटानगर कैपिटल रीजन से पीतापुल तक एसडीआरएफ कर्मियों और आवश्यक बचाव उपकरणों को सफलतापूर्वक पहुंचाया, जिससे जमीनी स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों को मजबूती मिली। अधिकारियों ने बताया है कि राहत एवं बचाव अभियान पूरी तरह जारी है और बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त हवाई सहायता भी तैनात की जा सकती है। इस बीच नागरिक उड्डयन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव दानी सालू ने कई पान्योर जिले के त्वरित कार्रवाई सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय वायुसेना, एसटीआरएफ और एपीडी होलोंगी के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि विकास के लक्ष्य और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा है कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा के क्षेत्र में निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली को तेजी से विस्तार कर रहा है।
1: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
0: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग जोखिम लाने की प्रवृत्ति में युद्ध और वृद्धि को सोशल मीडिया के प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने यह बात कही। उन्होंने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शन सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया।
2: The global south should be enabled.
3: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्वेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल घोषणा कर दी है। आज सुबह कराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार।
0: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ मुकाबला खेलेगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। फीफा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया।

0: मीडियम वेव किलोहर्ट्स कैचिलों ने खेली थी मीटर कैनिंग के बीच निस्का उच्च आकाशवाणी तबांग इंबर लंगे चंमा नुक्ते चुजे लंगा उन्हें दानमिंग तो आकाशवाणी तबांग देश नुक्ते मनबाग लेरम बनाम को चुदर लेरम संगन लंगे चंमा शिल नदा चे तुतन टेशी सी चंडी टेशी दिले निशुदर देशी छिलंगी तों खेली ग्रोलो छिंद डुपक तरिक खेली लंगे बोई गलो नितों ग्यानें खेने चिक्सुम रबने मेता लोग दावंग अपक चस चीथी रेजा फुर्बी इंबुर आगाशवाने तवंग लेरं बानां एफएम फ्रिकेंसी ग्यानें ब्ली मेगाहर्ट्स का ये सन्मेतों इंबुर लेंगेनों दा मनपल लेरं का दांब नमथर लेरं चित को चुदुर देश उत लेरं मा जैसे चेनबो शिवला से जे नमो चेंजु चेनमो टुलकु तंजे गुर्मे रिंबुचे से मनकी का गुर्या देशे नमो तंग नमथर लेरं मा सन्मेचिक मार मुथिया सन नासा
1: छोगमल सुंबुर जोजोंग दो इना छोगमल सुंबुर छोगल सिंचे ती रामेचे दो याया कोसुंबुर जोमल दोन दो इना ओम जेजुमा न्योरेला न्योने या वो इने न्योने बिना छोगल सिंचे ना ती रामेचे दो याया कोसुंबुर ती चे दो इना छोगल चे निया छोगल बिना गुलगे दो यां न्येबरों ने मिजिक सेम चाजा ちょちょ東京ラニオネソジュライナチャジャチェペメチャジャオデナジペメチャジャヤユインボイジショチェアルカンパデニチャジャナノメオレラチャジナカンブレボスナチャロデナバニオネモソニジェレチャジャナヤジュデゼオモロンゼセヤボカテダバソドイナシェマナズカンバヤカノデヤコスボチャジャチャジャナチャドイナノロイナヤチョガシャキュンゲドニオネナバダバシェメデユ초가 직제니 쌤스고 남아치를 속어지 나라면에 나온. 뒤준 나 해만 담지 야차로 쇼지 나 라면이 초가 어떤 왕다 주처럼에 놓은지. 엄마야고 이나 아슬이야고 이나 레티샤 세티가 속어티도 피우고서 말을 가고. 걔는 야차로 나가 피우니 어려다. 피대네 매대네 피우고서 속어지 자기하고 상하서 이유로 뭐노야야 돈대고야 야 피우게 놓으니 담아 주스면 어려다. 어디마다 상모토. 답해지지 말아 클로야. 다 초반에 그립 초반에 가면 그 사람이 어려라 초반에 쉬어먹어서야 대전을 라니라마라 아니마라 된거로 이나 배제 가면 내가 말하다 나와서 쳐줘서 그린이 뭐 배제 되는 걸 남아 쳐봐 그래 다 나와서 진짜가 오면 나서 캐님 이직 내가 말해서 응아랑 수도는 답다 가제

Вот

हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम शेदुन लेरिम के अंतर्गत आप सुनेंगे गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में खिम्मे निंगमा मठ में आयोजित सेचु छिन्मो धर्म कार्यक्रम के अंतिम दिवस के अवसर पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित परम पूज्य खिम्मे रिम्पोछे द्वारा लंबी आयु के लिए अभिषेक प्रवचन 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार शाम के 7:05 पर आज शाम के 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज की कविता। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे एलडी स्कॉलर्स होम की कक्षा 5 की छात्र मिस टशी ड्रेमा ग्यामो से अंग्रेजी में एक कविता। कविता का शीर्षक रहेगा मालू बालू। शाम के 7:11 पर सुनेगा कार्यक्रम एक और अनेक। इसके अंतर्गत आनंद लीजिएगा गायक जुबीन गर्ग और अन्य गायक कलाकारों के आवाजों में फिल्म द ट्रेन से के और जुबीन गर्ग, फिल्म क्रिश ट्री से अलीशा चिनॉय और जुबीन गर्ग, फिल्म नमस्ते लंदन से जुबीन गर्ग और श्रिया घोषाल, फिल्म आईसीयू से जुबीन गर्ग, विशाल दत्तलानी और शेखर रवजियानी, फिल्म बस एक पल से के और जुबीन गर्ग और फिल्म बिग ब्रदर से उस्ताद सुल्तान खान और जुबीन गर्ग के स्वरों में चंद गीत। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज शाम के 7:50 पर। शाम के 7:55 पर आनंद लीजिएगा फिल्म गुंजन सक्सेना से अरिजीत सिंह की आवाज में एक देशभक्ति गीत। आज रात 8 का वक्त रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा पसंद किए गए चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि की 9 सुनेंगे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 26 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाना की तरह कल हमारे सभा आरंभ होंगे दोपहर के 2 मिट्टी न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। दोपहर के 2:30 पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत आप पहले सुन पाएंगे गांधी स्मृति तत्पश्चात हिंदी भक्ति गीत। 3 विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। विभिन्न प्रांत के इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे गायक जिग्मे दोर्जी और साथियों से लद्दाखी लोकगीत। दोपहर के 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनिए जेएनवी तवंग की 11 कक्षा की छात्र मिस पेमा चुकी से मेरे शौक और इसके मुझे क्या सिखाया विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर के 3:33 का वक्त रहेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत का। इसमें कल आप सुन पाएंगे फिल्म पुष्पा द राय से जावेद अली, फिल्म ओम शांति ओम से के, फिल्म लापता लेडीज से अरिजीत सिंह, फिल्म आयशा से अमित त्रिवेदी, नकाश अजीज और ऐश किंग, और फिल्म गदर 2 से अरिजीत सिंह और मिथुन के स्वरों में चंद गीत। कल दोपहर के 3:50 पर आप सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। इस कार्यक्रम में कल आप सुन पाएंगे फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से
शेखर

मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम झरोखा। कार्यक्रम झरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। तो आइए पहले हम आपको अवगत करवाते हैं।

राव जियानी, सलीम मार्चेंट और नीति मोहन, फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से अरिजीत सिंह, फिल्म भूल भुलैया 2 से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार, फिल्म जबरिया जोड़ी से यासिर देसाई और अल्तमाश फरीदी, फिल्म केदारनाथ से अरिजीत सिंह, फिल्म सूर्यवंशी से अरिजीत सिंह और नीति मोहन, फिल्म केसरी से अरिजीत सिंह और आशीष कौर, फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल, और फिल्म एयरलिफ्ट से अमाल मालिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार के आवाजों में चंद नगमे। कल शाम के 4:30 पर शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग, 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। शाम के 5 बजे नमथर लेरिम, शाम के 5:30 पर आप सुनिएगा दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री लोबसंग नोरबू से। शाम के 5:35 पर कार्यक्रम कुंसिल, कल शाम के 6 बजे लेरिम सेरा, 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा, कल शाम के 6:20 का वक्त रहेगा नेहरू गोनपा गोर्शे ग्रुप के श्रीमती अंगचिन लामू और साथियों से गुंचक सुम्पा, तुंगछा ड्रोमा, ग्यावे शेप्तन, बर्चे लमसिल, कैप्ट्रो और गोवा मनलम। कल शाम के 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार तथा 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। शाम के 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता, इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे इलाइट इंग्लिश स्कूल तवंग के 5वीं कक्षा की छात्र मिस रिक्सिन डोलमा से हिंदी में एक कविता। कविता का शीर्षक रहेगा खिलौने वाला। कल शाम के 7:11 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम दर्पण, इसमें कल आप सुन पाएंगे एक ही गायक कलाकार गायिका अलका यज्ञिक के स्वर में फिल्म सलामी, फिल्म हमराज, फिल्म रास, फिल्म दिल क्या करे और फिल्म खलनायक से चंद गीत। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा शाम के 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम के 7:55 पर आने लीजिएगा एक देशभक्ति गीत का। कल रात के ठीक 8 बजे सुनिएगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमे। 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, यदि हमारे केंद्र से कल प्रसारित की जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी, इसी जानकारी के साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब यही पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे मनपा में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदना भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।

0: किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ला ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमरीका के फुलटर्न में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. Addressing the India Global Forum UK-India Week in London today, Mr. Goyal said sky is the limit in terms of the economic benefits that will flow from the agreement. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, which will enter into force on the 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
4: The United Kingdom Free Trade Agreement is helping our industry also evolve, go up the ladder, compete with businesses in the United Kingdom.

की छात्र मिस ट्रेशी ड्रेमो से अंग्रेजी में एक कविता। कविता का शीर्षक था मालू बालू। इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:12 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम एक और अनेक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए गायक जुबिन गर्ग के साथ अन्य गायक कलाकारों द्वारा गाए चंद गीत। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म द ट्रेन एंड इंस्पिरेशन से के और जुबिन गर्ग की आवाजों में। गीत सईद कौधरी के है व संगीत मिथुन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए, अलीशा चिन्नॉय और जुबिन गर्ग के स्वरों में फिल्म क्रिश ट्री से। इस गीत के गीतकार है समीर तथा संगीतकार राजेश रोशन।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, कुमार द्वारा शब्द रचना पर फिल्म रास 3 से जुबिन गर्ग और श्रिया घोषाल की आवाजों में, और इस गीत को संगीत से सजाया है जीत गंगुली ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म नमस्ते लंदन से। अलीशा चिनॉय, हिमेश रेशमिया और जुबिन गर्ग के आवाजों में जावेद अख्तर के रचित गीत को संगीत से सवारा है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोता कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म आईसीयू से। जुबिनगर विशाल दत्तलानी और शेखर रावजियानी के आवाजों में विशाल शेखर के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है विशाल दत्तलानी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है फिल्म बस एक पल से, के और जुबिन गर्ग की आवाजों में। अमिताभ वर्मा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विवेक पिलिप ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम एक और अनेक अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक ने कई पन्योर जिले में आई बाढ़ से हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लापता लोगों को लेकर चिंता जताते हुए उनके सुरक्षित मिलने की प्रार्थना की। राज्यपाल ने सक्रिय और अग्रिम तैयारियों पर बल देते हुए जिला प्रशासन तथा सभी संबंधित विभागों को उच्च सतर्कता बनाए रखते हुए मानसून के लिए तैयारियों को और मजबूत करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने, मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने तथा बाढ़ और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक समय पर परामर्श और चेतावनी पहुंचाने को कहा है। राज्यपाल ने राज्य प्रशासन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा सीमा सड़क संगठन बीआरओ को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और महत्वपूर्ण सड़क संपर्क मार्गों को खुला रखने तथा भूस्खलन से आए मलबे को समय पर हटाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज जानकारी साझा की है कि जीरो में फंसे 14 पर्यटकों को हवाई मार्ग से सुरक्षित नाहरलगन पहुंचाया गया है, जबकि दापोरिजो से 11 अन्य पर्यटकों और एक मरीज को निकालने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि भारतीय वायुसेना और राज्य नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा अब तक कुल 5 हेलीकॉप्टर उड़ानें संचालित की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि जमीन पर भी राहत कार्य जारी है और पोसा ब्रिज के निकट मार्ग सहित 2 प्रमुख सड़क अवरोधों को हटाया गया है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हुई है। इस बीच शेष 4 लापता लोगों का पता लगाने के लिए खोज एवं बचाव अभियान अभी जारी है। 16वें याचुली विधानसभा क्षेत्र विधायक तोको

0: तुंग ने आज कई पान्योर जिले के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा कर हालिया भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया। विधायक ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिससे उन्हें क्षति की व्यापक स्थिति पर जानकारी प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों, बह चुके पुलों, भूस्खलन संभावित हिस्सों तथा प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण से दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद विधायक ने जमीन स्तर पर भी कई प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिला अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने क्षतिग्रस्त स्थलों का निरीक्षण किया, प्रभावित परिवारों से मुलाकात की तथा स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी ली। पापुमपारे और कई पान्योर जिलों की जारी बाढ़ की स्थिति तथा बड़े पैमाने पर चल रहे राहत एवं बचाव अभियानों को देखते हुए पापुमपारे जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में ड्रोन तथा अन्य मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी के संचालन पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट लोपसांग शेरिंग द्वारा जारी आदेश के अनुसार बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए हेलीकॉप्टर आधारित राहत एवं बचाव अभियान आज से शुरू किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि अनियंत्रित ड्रोन गतिविधियां हेलीकॉप्टरों की आवाजाही में बाधा डाल सकते हैं, जिससे बचाव कार्य प्रभावित हो सकते हैं और आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी हो सकती है। पुलिस अधीक्षक सागाली केमिन और बालीजान के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा दोईमुख उपमंडल अधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने से परहेज करें और सुरक्षित एवं प्रभावी राहत तथा बचाव कार्यों में सहयोग करें। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने आज ईटानगर के जलांग स्थित अरुणोदय विश्वविद्यालय में आयोजित नॉर्थ ईस्ट एनएसएस फेस्टिवल 2025-26 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उत्सव का औपचारिक उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री ने समय प्रबंधन, सांस्कृतिक समरसता और युवाओं में भाईचारे की भावना विकसित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने एनएसएस स्वयंसेवकों से उत्तर पूर्वी भारत की विविध संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करने तथा राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने का आह्वान किया। यह उत्सव भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा एनएसएस क्षेत्रीय निदेशालय गुवाहाटी, अरुणोदय विश्वविद्यालय ईटानगर तथा अरुणाचल प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के राज्य एनएसएस सेल के सहयोग से आयोजित की जा रही है। महोत्सव में उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 320 एनएसएस स्वयंसेवक और कार्यक्रम अधिकारी भाग ले रहे हैं। और सघन प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जिला टीकाकरण टास्क फोर्स की बैठक एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम आज अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित उपायुक्त कार्यालय में आयोजित किया गया। बैठक के दौरान सघन प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम पर विशेष ओरिएंटेशन आयोजित किया गया, ताकि जिले भर के अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और बेहतर तैयारियों को सुनिश्चित किया जा सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Shabashati Bhattacharya with Regional News. Governor Lieutenant General Retired K.T. Purnock has expressed deep grief over the tragic loss of life caused by the flash flood in Cape Anior district. He also expressed concern for those who are still missing and prayed for their safe recovery. Calling for proactive measures, the Governor directed the district administration and all concerned departments to remain on high alert and strengthen preparedness for the monsoon season. He urged officials to identify vulnerable locations, closely monitor weather conditions and ensure timely dissemination of advisories to people residing in flood-prone and landslide-prone areas. The Governor also instructed the State Missionary Disaster Management Authorities and the Border Roads Organizations Bureau to work in close coordination to keep vital road communication networks open and free from landslide debris. Chief Minister Pema Khandu today informed that 14 stranded tourists were airlifted from Jiro to Nahalagun, while evacuation of another 11 tourists and one patient from Dapurijo is underway. Khandu further added that a total of 5 helicopter sorties has been conducted by the Indian Air Force and the State Civil Aviation Department. On the ground, 2 key road blockages, including the stretch near Pusa Bridge, have been cleared, improving access to the affected areas. Meanwhile, search and rescue operations are underway to locate the remaining 4 missing persons. Yachuli MLA Toko Tatung today conducted an extensive visit to various disaster-affected areas across Cape Anior district to assess the damage caused by the recent natural calamity. The MLA first carried out an aerial survey of the affected areas by helicopter.

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के ठीक 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मोरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के मुकेश केशव, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह से। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म पाताल भैरवी के यह फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इंडिवर के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने और इस गीत के बोल है मेहमान नजर की बंद।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं असम राज्य से हितेंद्र दास जी की फरमाइश पर। आइए सुनते हैं फिल्म कुदरत फिल्म से यह गीत, गायिका लता मंगेशकर के आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी द्वारा शब्दबद्ध पर इसे संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने, और इस गीत के बोल है तूने ओ रंगीले।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाशी गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यू ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत। पैगंग गांव लहू से आप है पेमा टाशी तेंजिन दावा और लोबसंग। आप सबकी पसंद पर आई सुनते हैं फिल्म फूल और अंगार से यह गीत। अनु मलिक द्वारा संगीत निर्देशन पर रानी मलिक के लिखे बोल पर इस गीत को आवाज दे रहे हैं कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी ने। इस गीत के बोल है चोरी चोरी दिल तेरा चुराया।

श्रोताओ, अगला नगमा पेश करने की हमें गुजारिश की है मैदुम टू से आप श्रोताओ ने। आप है टशित सोमो, पेमा यंगजुम, गेंदन रेमा और ठिल्ले छोटन। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म अनकहे से यह गीत, गायक कुणाल गंजावाला के आवाज में। सुब्रत सिन्हा द्वारा लिखी बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने, और इस गीत के बोल है तुमसे यूं मिलेंगे।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मेरेट कैन से। दिग्दर्शन कविता करण, शक्ति रिया, जया और दर्शन भाई। आप सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से यह गीत, लता मंगेशकर और मन्ना दे के युगल स्वरों में। पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत के बोल है यशोमती मैया से।

श्रोतम, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी रात के 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 9:00 बजे सुनेंगे न्यूज़ @9। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं अतहर सईद आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज भी हम लेकर आए हैं खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग, यानी खेल जगत की बड़ी खबरें आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक। सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी, इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील, स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का अगला सत्र 25 जुलाई से शुरू। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में देव मीणा अनुष्का यादव ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ एशियाई खेलों के लिए अपना स्थान पक्का किया। सबसे पहले बात महिला आईसीसी क्रिकेट की। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने आज भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 20वें ओवर में 8 विकेट पर 134 रन बना लिए हैं। इस बीच मेज़बान इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ को 38 रन से हराकर विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इन दोनों टीम ने टूर्नामेंट में इससे पहले कोई मैच नहीं गंवाया था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 186 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज़ की टीम 5 विकेट पर 148 रन ही बना सकी। अगर वेस्टइंडीज शनिवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड को हरा देता है तो वो भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैडमिंटन की।

0: अमेरिका के फुलटर्न में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस पर विस्तार से जानकारी लेते हैं अपनी सहयोगी लवली निगम से।
1: महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। महिला सिंगल्स के पहले राउंड में तन्वी ने जर्मनी की यावुन ली को 23-21, 21-16 से हराया, जबकि देविका ने पेरू की इनेस लूसिया कैस्टिलो को 21-14, 21-14 से पराजित किया। रौनक चौहान ने पूर्व विश्व जूनियर रजत पदक विजेता एस शंकर मुथुस्वामी को 23-21, 21-16 से हराया। इसके बाद पांचवी वरीयता प्राप्त किदाम्बी श्रीकांत ने अपने ही देश के डी सनित के खिलाफ 21-14, 21-12 से जीत हासिल की। महिला सिंगल्स में रक्षिता श्री और मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और के मनीषा की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच गई है। रक्षिता ने चेक गणराज्य की टेरेसा स्वाबिकोवा को 21-15, 21-8 से हराया, जबकि सातवीं वरीयता प्राप्त मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव रावत और मनीषा ने इंडोनेशिया के वेरवान एहसान एडम और सेरेना कानी को 26 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 21-16 से हराया। पहले दिन महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रिगेस को पराजित कर दूसरे दौर में जगह बनाते हुए अपने अभियान की शुरुआत की।
0: और अब बात फुटबॉल की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में आज कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मैक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं।
2: दक्षिण अफ्रीका ने प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 32 का टिकट हासिल कर लिया है। ग्रुप ए के मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। साउथ अफ्रीका की इस ऐतिहासिक जीत के नायक थापेलो मासेको रहे, जिन्होंने मैच का इकलौता गोल दागा। पहले हाफ में दोनों ही टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो सका। मैच के 63वें मिनट में तेशपांग मोरेमी ने बेहतरीन रन बनाते हुए पेनाल्टी बॉक्स के किनारे में शानदार पास दिया, जिसका भरपूर फायदा मासेको ने उठाया। मासेको ने गेंद को नियंत्रण हुए बाएं पैर से बेहतरीन शॉट लगाया, जो सीधा गोल पोस्ट में पहुंचा। 3 मुकाबलों में 4 पॉइंट के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बनाई। ग्रुप ए के मुकाबले में सह मेजबान मैक्सिको ने बहतरीन प्रदर्शन करते हुए चेकिया को 3-0 से हराया। ये पहला मौका है जब मैक्सिको ने वर्ल्ड कप में अपने तीनों ग्रुप स्टेज मैच जीते हैं, और ये भी पहली बार है जब उन्होंने 1970 के बाद से अपने सभी ग्रुप स्टेज गेम्स में क्लीन शीट रखी है। मैक्सिको सिटी स्टेडियम में माटेओ शावेज ने शानदार खेल दिखाते हुए मैच का पहला गोल दागा। उन्होंने राहुल जिमनेज के पास पर डिफेंस को पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन गोल से मैक्सिको को 1-0 की बढ़त दिलाई। जूलियन क्विनोन्स ने आसान फिनिश करते हुए गोल को दोगुना कर दिया। मुकाबले के स्टॉपेज टाइम में अल्वारो फेडाल्गो ने तीसरा गोल करते हुए मैक्सिको की बढ़त को 3-0 करते हुए टीम को जीत दिलाई।
3: And a real chance, opening goal. What a time for Mateo Chavez to grab his first goal for Mexico to bring the house down here in Mexico City. It's finished. Czechia 0, Mexico 3.
2: ग्रुप सी के मुकाबले में मोरक्को ने शानदार वापसी करते हुए हैती को 4-2 से हराया। इस जीत के साथ ही मोरक्को ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। मुकाबले में हैती ने 10वें मिनट में ही पहला गोल कर सभी को चौंका दिया। मैच के 39वें मिनट में अशरफ हकीमी ने पहला गोल करते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हालांकि हैती के लिए दूसरा गोल विल्सन इसिडोर ने करते हुए टीम को 2-1 से आगे कर दिया। बतौर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी सुफियान रहीमी ने कॉर्नर के रूप में मिले मौके का फायदा उठाते हुए मोरक्को के लिए तीसरा गोल किया। इसके बाद मुकाबले के 89वें मिनट में गोसिम यासीन ने चौथा गोल करते हुए मोरक्को की जीत पर मोहर लगा दी।
3: A wonderful spectacle in Atlanta ends with Moroccan joy.
2: ब्राजील ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में स्टार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने 2 गोल दागे, जबकि मैथियस कुन्हा ने 1 गोल किया। मैच के 6वें मिनट में ही ब्राजील ने 1-0 की बढ़त हासिल की। पहले हाफ के अतिरिक्त समय में विनीसियस ने फिर से गोल कर ब्राजील को मैच में 2-0 से आगे कर दिया। मैथियस कुन्हा ने शानदार फिनिश करते हुए ब्राजील को 3-0 से जीत दिलाई।

0: and it hasn't taken long. Brazil playing their beautiful game. Here's a moment many Brazilian fans have been waiting for. It's a comfortable 3-0 win for Brazil on the night.
1: ग्रुप बी के मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को एक तरफा अंदाज में 3-1 से हराया। मैच के 29वें मिनट में बॉक्स के बाहर से बेहतरीन गोल करते हुए बोस्निया हर्जेगोविना को 1-0 की बढ़त दिलाई। टीम की ये बढ़त सिर्फ 5 मिनट बाद ही दोगुनी हो गई, जब कतर के गोलकीपर सुल्तान अल ब्राके एडिन जेको के क्रॉस को क्लियर करने के प्रयास में खुद का ही गोल कर बैठे। हालांकि मैच के 42वें मिनट में कतर ने मुकाबले में शानदार वापसी की। टीम के अनुभवी खिलाड़ी हसन अल हायदोस ने बेहतरीन गोल करते हुए स्कोर को 2-1 कर दिया। मैच के 80वें मिनट में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए एर्मिन महमिक ने डिफ्लेक्टेड शॉट से बोस्निया हर्जेगोविना के लिए तीसरा गोल दागा और टीम की जीत पर मोहर लगा दी। ग्रुप बी के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 2-1 से हराया। हार के बावजूद कनाडा की टीम भी नॉकआउट स्टेज में पहुंचने में सफल रही। मैच का पहला गोल स्विट्जरलैंड के लिए दूसरे हाफ में आया। रुबेन वर्गास्क ने बेहतरीन गोल करते हुए स्विट्जरलैंड को मैच में 1-0 की बढ़त दिलाई। टीम की इस बढ़त को जल्द ही 20 वर्षीय खिलाड़ी जोहान मजाम्बी ने दोगुना कर दिया। मैच के 57वें मिनट में मजाम्बी ने स्विट्जरलैंड की तरफ से दूसरा गोल किया। हालांकि मैच के 76वें मिनट में कनाडा ने मुकाबले में वापसी की। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी प्रॉमिस डेविड ने कनाडा के लिए पहला गोल किया और मैच को बेहद रोमांचक बना दिया। स्कोर 2-1 करने के बाद कनाडा ने बराबरी करने का काफी प्रयास किया, लेकिन न्यूजीलैंड के मजबूत डिफेंस ने उन्हें कोई और मौका नहीं दिया और मुकाबले को अपने नाम किया।
2: Less than 60 seconds into the second half and it's Switzerland who opened the scoring. Switzerland top the group. Canada finished second.
1: प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
3: फुटबॉल से ही एक और खबर। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का अगला सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा और इसका फाइनल 23 अगस्त को खेला जाएगा। 138 वर्ष पुराने इस टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें दो विदेशी टीमें भी शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टूर्नामेंट का मौजूदा चैंपियन है। मैच 5 शहरों कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग में खेले जाएंगे। और बात एशियाई खेलों की। भुवनेश्वर में खेली जा रही 65वीं अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देवकुमार मीणा ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। कलिंगा स्टेडियम में आज हुए मुकाबले में सीवा वॉल्टर ने 5.46 मीटर की दूरी तय की और राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईची, नागोया, जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 65वीं अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर प्रस्तुत है हमारी सहयोगी सरफरोजी की यह रिपोर्ट।
4: देव कुमार मीणा के लिए ये सफलता रांची में फेडरेशन कप में कुलदीप कुमार के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड साझा करने के ठीक एक महीने बाद आई, जहां दोनों एथलीट्स ने 5.45 मीटर की दूरी तय की। भुवनेश्वर में आज 1 सेंटीमीटर और ऊपर जाकर देव कुमार मीणा अब राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। ये कामयाबी देव के लगातार दूसरे राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रदर्शन को दिखाने के साथ ही भारतीय पुरुषों के पोल वॉल्ट में हो रही लगातार प्रगति को भी दिखाती है। 2 साल से भी कम समय में राष्ट्रीय रिकॉर्ड में 5 बार सुधार हुआ है। देव ने प्रतियोगिता में निरंतरता दिखाई, 5.46 मीटर पर बार को सफलतापूर्वक पार किया। इससे न केवल रिकॉर्ड बुक में उनका नाम फिर से आया, बल्कि जरूरी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट से पहले उनकी स्थिति भी मजबूत हुई है। देव की ये कामयाबी मील का पत्थर है। अनुष्का यादव ने भी हैमर थ्रो में बड़ा प्रदर्शन किया है। महिलाओं की हैमर थ्रो में एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है, जिसमें अनुष्का यादव ने इंटर स्टेट चैंपियनशिप में 65.64 मीटर तक पहुंचकर एक बड़ा थ्रो करके पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस रिकॉर्ड तोड़ने वाले थ्रो के साथ अनुष्का ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी करते हुए महिलाओं की 100 मीटर की शुरुआती हीट्स में नियंत्रित दौड़ के साथ एशियन गेम्स के लिए अपना स्थान पक्का किया। ज्योति ने सीजन की अपनी पहली दौड़ में 3.14 सेकंड का समय निकाला। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।

0: दिल्ली के भारत मंडपम में 26वीं एशियन सीनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप का समापन हो गया है। भारत में इस खेल की पहली महाद्वीपीय स्तर की यह प्रतियोगिता थी। प्रस्तुत है हमारे सहयोगी अर्जुन शर्मा की ये रिपोर्ट।
1: चैंपियनशिप का समापन भव्य तरीके से किया गया। इस चैंपियनशिप ने वैश्विक स्तर पर भारत की साख एक विश्व स्तरीय खेल प्रबंधन वाले देश के रूप में की। इस चैंपियनशिप में 34 से ज्यादा देशों के 400 से ज्यादा विश्व स्तरीय एथलीटों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट इसलिए भी अहम था क्योंकि हिस्सा ले रहे एथलीट और टीमें लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए अपना लंबा रोड मैप बना रहे थे। प्रतियोगिता में जापान 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि दक्षिण कोरिया 10 पदकों के साथ दूसरे और कजाकिस्तान 5 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत के लिए ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रशासनिक सफलता और एक तकनीकी उपलब्धि रही। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगुवाई में हुए इस टूर्नामेंट में स्थानीय एथलीटों को अच्छा अवसर मिला। भारत की प्राची लोहान और सचिन के टॉप 25 में रहने के साथ साथ टोक्यो ओलंपियन सीए भवानी देवी और उभरती स्टार तनीक्षा खत्री ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और देश में फेंसिंग संरचना की प्रेरक वृद्धि पर चर्चा की।
2: फेंसिंग चैंपियनशिप एशिया लेवल का यहाँ इंडिया में ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है और इसमें वर्ल्ड फेंसिंग फेडरेशन के भी सीनियर सब ऑफिशियल्स आए हैं और मैंने जो पता लगाया इंडिया के कई प्लेयर्स बहुत एक दो पॉइंट से हार गए हैं लेकिन काफी अच्छा खेला है। भविष्य में फेंसिंग को और आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग गेम है।
0: और अब हॉकी। अंडर 21 भारतीय पुरुष हॉकी टीम अगले महीने बेल्जियम के दौरे पर जाएगी, जहां वो मेजबान बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। और अब चलते चलते एक बार फिर क्रिकेट मैदान की ओर चलते हैं, जहां महिला T20 विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 139 रन का लक्ष्य दिया है। और श्रोताओ, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे यानी अतहर सईद और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से

0: लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति

0: डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं

0: के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9. The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hiked to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from July 15. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
3: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic

0: played 20 overs. In the FIFA World Cup, Curaçao will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US today, late night. The match is scheduled to begin at 1:30 a.m. IST. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in US. The match will begin at 1:30 a.m. IST. Later, Japan will take on Sweden in Group F match in Arlington, US, tomorrow early morning. The IMD has said that the conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. The IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for the next 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Free Trade Agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees from 1st of July, tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 9:15 हुए हैं और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो जाते जाते हम आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल दोपहर 3 बजे सुनिएगा विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। शाम के 4:30 पर शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। कल शाम के 7:11 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दर्पण। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आप सुनिएगा कल रात के ठीक 8 बजे। 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। श्रोताओं, कल हम फिर हाजिर होंगे दोपहर के ठीक 2 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत सोमो, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गरे और मिस श्री तानिंग तको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमल कुमार दास, मनपा में उत्को